थोर नेपाल ख नेपाल भाषीय समाचार जे पेश पाखी नादिस थौ नेपाल सम्बत चिन्स सौ पिकुद दिलाथो चतुर्दशी नागडुङ्गा सिस्ने खुसी सुरुङ मार्ग मिक औपचारिक रूपमा उलिज्या जुगुदो पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइका या नाय तानाका अकिहिको ओ नेपाय नीति जापानी राजदूत मायादा तोरु मङ्का कथ सुरुङ मार्ग उलिज्याई नादीको ख जाइका नाय तानाका नागडुङ्ग सिस्ने खुसी सुरुङ मार्ग नेपाया यातायात विकास यात्रा या ऐतिहासिक जुगु नेतनादिल सुरुङ योजना निर्माण सञ्चालन ओ मर्मत सम्पार समिति क्षमता अभिवृद्धि या नीति नेपा ओ जापानदोथी नुगु प्राविधिक ग्वाली परियोजना न्यागुन वेक्ल खनादिल थुसी नेपाल ओ जापानदोथी कुटनीतिक स्वाप पोलिस्ता जुगु नेसद थेङ्गु वेक्लन यत्नादिल नेपाया नीति जापानी राजदूत मायादा तोरु जापान सरकारी आधिकारिक विकास सहायता ओडिए ओ नेपाली प्राविधिक ओ श्रमिक पिनुगु कुतल सुरुङ देखे त तालागु यत्नादिल थोया झोले पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सचिव गोपाल प्रसाद सिक्देल आ सकल या त अपुगु यत्नादिल ए वेगु वनिगु या त आ अपुगु तागुदो निगु अरबया बजेटे डेकुगु थो सुरुङ छेलेबले दाम्पुले मागु व्यवस्था एना तगुदो जिल्ला प्रशासन ज्याकु सुनसरी मिग चुङ्गु सर्वदल बैठक सकल या त सामाजिक सद्भाव काम या त इनाप यागु कोचुगुदु प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव खिम्रिया नासुई चुङ्गु मु ज्या देवानगञ्ज गाउँपालिका तिन कम्तानगञ्जे जुगु छाकाया विशेष थते इनाप यागु कोचुगु ख कप्तानगञ्जे निगु पछेदोथी जुगु कचौँ या त दिकेगु झोले गोली केगु बोले नि पेद दुम ओम प्रकाश मेहता सिकु ख मिग निषेध यादवको कर्फ्यू थौ सुथे कोचागुदु नेपाल विद्युत प्राधिकरण श्रावण निषेजक मतिया बिले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटैगु धागुदो आन्तरिक राजस्व ज्याकु मिग छगु सूचना पाके असार मसान्त तक्या विद्युत उपयोगको खपते बिलिङे भ्याट मजिगु थाटुकागु धागुदो निर्वाचन आयुक्त नीति प्रस्तावित गुरुप्रसाद वागले ओखलडुङ्गा ओ डाक्टर राजीव सुब्बा ए या सुनवाई या त ज्याधल कथ संसदीय सुनवाई समिति या मुज्या थौसुते चुनितेङ्गुदो संवैधानिक परिषद वङ्गु असार उन्नाइस या मुज्या संवैधानिक परिषद प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की ना सिफारिस यागु ख अथे निर्वाचन आयुक्त वागले ओ सुब्बा या त सिफारिस यागु ख संसदीय सुनवाई समिति सुनवाई यादुङका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त या त राष्ट्रपति नियुक्त याइगु गोसादु समिति थोन्याने प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त विरुद्ध उजुरी इनाप यागु ख सरकार नाप सहमति जुई ढुङ्का धनगढी थेङ्का अनसन यनादीमा चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसी अनसन त्वाठिया दिगुदु निगु पच्छेदोती हेगु धलया सहमति लाची ते ढुङ्का डाक्टर केसी अनसन ट्वाला दिगु ख वेक्ल न्यानुई अनसन ट्वाल्ना दिगु ख धनगढी निनु तक सल ब्याके ढुङ्का सहमति जुगु ख सहलस सरकारी पक्ष प्रधानमन्त्री या स्वास्थ्य सल्लाहकार प्राध्यापक डाक्टर जगदीश प्रसाद अग्रवाल शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय सचिव चुडामणि पौडेल स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय सचिव डाक्टर विकास देवकोटा ओ केसी पाखे डाक्टर अमृत जोशी डाक्टर पवन थापा बोर्ती काइदिगु ख सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा झरियाले खुसीबा चल नाप विपद व्यवस्थापन या नीति स्थानीय प्रदेश ओ सङ्घीय सरकारद्वति छप्प छति जुइमा धाइदिएको दु नुवाकोटिया तादी गाउँपालिका पङ्ग या विशेष अनुया नाय सन्तमान तामाङ नाप मन्त्रालय सहल या झोले वेक्ल थथे धाइदिएको ख सहलस सञ्चार मन्त्री डाक्टर तिमी सेना गाउँपालिका समग्र विकास निर्माण अवस्था स्थानीय तहल फयामाला चुङ्गो पङ्ग नागरिक गुनासो व अपेक्षाबारे जानकारी कैयादिल शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल शिक्षा लागा संरचनागत सुधार व गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ अतिक मा धैदिगु दु जनकपुर धाम या रामस्वर ब्राह्म सागर बहुमुखी काम प
से मिग निरीक्षण व कैंपस से प्राधिक पी नाप सलस वेक्ल थथे धैदिको ख कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री सोभिता गौतम निजामती सेवा स्विद सेवा ओ ने न्याद उमेर हद विशेष प्रक्रिया दुगु नेतनादिगुदो मिग चितवन पत्रकार पिन्नाप खलनादिसे वेक्ल कर्मचारी स्विद सेवा ओ ने न्याद या उमेर हद या विशेष सरकार ल्युने मौनेगु नेतनादिल लुम्बिनी आध्यात्मिक पर्यटन प्रबन्धन या त विशेष योजना प्याकेज दिएका प्रचार प्रसार या त बिगुदो आर्थिक गतिविधि चलायमान यासे लजका चुलाका बित पर्यटन प्रवर्धन या मागु ली विशेष योजना नापुन प्रचार प्रसार रे ब बियुगु धागु ख नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट नाटा लुम्बिनिया गोसे बुटोले मिग गोसा गोगु नेपाल भारत पर्यटन पत्रकार नाप्ला ज्याजोले वेकअप से थथे धैदिगु ख बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेल राज पाण्डे कालीगण्डीकी जुया मुक्तिनाथ लखौँ भारतीय तीर्थयात्री वनिगु लकस देखे फसा धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन जुगु पलसा पोङ्का दिल नेपाल भाषा परिषद या गोसा कुन्दन प्रसाद श्रेष्ठ झिगुगु कृति चोख मुना उगु थुगु पितपुजिया जुगुदो नेपाल भाषा एकाडेमी चान्सलर मल्के सुन्दरली सिंह पहापी प्राज्ञ प्रतिश्वरा स्यामी प्राज्ञ लक्ष्मी माली योगेन्द्रमान श्रेष्ठ नेपाल भाषा परिषद दाँबरी मङ्गला कारणजित व नेपाल भाषा टाइम्स प्रकाशक रमेश काजी स्थापित मङ्का पितपुजा एनादिको ख नेपाल भाषा साहित्य इतिहास प्राचीनकाले चोख विधा तर्सक चो न्यासा थौकुने समालोचना प्याख नाट्य मोजुया उना चोङ्गुली थुगु चोखमुना लिकुना चोङ्गु निबन्ध ख्य हाक्न चक्निगु जुगली मुपा मल्लके सुन्दर गर्भया लसता पुङ्का दिल सपुया त दुवागु दुवालेगु झोले उगु सपुती मुक्क चिपु चोसु दुथ्यागु चोखमुन्या पेपु निबन्ध व खुपु आध्यात्मिक विषय चोसु दुथ्यागु ख नेपाल भाषा टाइम्स प्रकाशक रमेश काजी स्थापित कनादिगु ख नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान पाग सामी प्राज्ञ माली इतिहासविद योगेन्द्रमान श्रेष्ठ विश्व थुगु सपुती व्यङ्ग्यात्मक भ्रष्टाचार भावनात्मक धर्म कर्म बुद्ध धर्म या चतुराय सत्य मन शून्यता मोक्ष व मुक्ति या भिन्नता थिए जागु सेल लागु चोसियो बारे समीक्षा एनादिगु ख नेपाल भाषा मिसा खलया गोसलया खलया संस्थापक ना व नेपाया नापामा मिसा चोमी कवि केशरी चित्तधर हृदय के मोतीलक्ष्मी उपासिका या सचिव चिन नेकगु बुदी हङ्गुदु नेपाल भाषा मिसा खलया नाय धर्मसभा तुलाधर या समन्वय श्री जुगु ज्याजुले छ्यान्जे प्रेमहिरा तुलाधर लस्कुस पङ्कादिगु ख ज्याजुले बाखा चोमी नली ब्रजाचार्य मिसा साहित्यकार मोतीलक्ष्मी उपासिका या त थम मचबले निसे मस्युगु ख कनादिसे वेकया प्रेरणा कया थ न नेपाल भाषा साहित्य खेले व यागु ख न कनादिल सह प्राध्यापक उर्मिला ताम्रका र थ म एसएलसी बोना चोङ्गु इले वेकया बारे बोनागुली मिसा पिन्सन थुको त ज्या याफै धैगु भाव बोलोङ्गु ख कनादिसे उकिया हे प्रेरणा थ म कयागु अनुभव या खन कुलादिल ज्याजुले श्रद्धाचारी गुरुमान मोतीलक्ष्मी उपासिका या साहित्यिक सामाजिक सेवा थेरवाद बुद्ध धर्म या खेले वेक्ल यनादिगु योगदान या त कना विजयासे वेक नाप या थगु अनुभव या ख कना विजयागु ख मु पालिसे नेपाल भाषा मिसा खोला पुलाम नाय सुवर्ण केसी चित्रकार मोतीलक्ष्मी उपासिका नेपाल भाषा साहित्य ख्य या त चो ह्याके त आफ्नो योगदान याना वगु ख

उलादिल्ल नाप मतलक्ष्मी उपासिका समाज यादा याना वोङ्गु योगदान खदर झ्याब्ले याना चुने मागु खन वेक्ल खनादिल नेपाल राष्ट्रिय खड्गी समाज यी जिल्ला समिति गोसाले महिला विभाग निसङ्गुदो उगु ज्याजुले यी जिल्ला दुज सपना साई या कजुते अनु साई विनयता साई पेमा तण्डुकार साई दिना साई नाप नि नेमेसिया महिला विभाग निसङ्गु ख मुपा नन्दकिशोर साई नुगु महिला विभाग या ज्यास्ना पुचया त भिन्दुना ब्यादिसे समाज बिगु जिम्मेवारी पुङ्के त तातुने त इनाप याना दिल केन्द्रीय दुज नाप युवा विभाग या कजी विक्रम खड्गी समाज झ्याके त युवा त मधेका मगासा अग्रज पिंस क घना मयङ कुगुली चुता पुङ्का दिसे सक्ले जाना छु न छु याना हे केनी मागु ख कना दिल नुग ख ते गु छोले एल महानगरपालिका 19 वडा दुज निर्मला खड्गी मिस्त धैपी छेन पिने वे हेमा उक्या नीति इच्छा ओ शिक्षा मधेक मगाको ख कना दिल यही महानगरपालिका 22 वडा दुज नाप कार्यपालिका दुज ललिता खड्गी यही जिल्ला समिति महिला विभाग या त सामाजिक समिति पाकी मागु फुचागु ग्वाली या त थपी झ्याब्ले कुत यागु पलसा पुङ्का दिल नाजाम साहित्यकार लिसे ख्याल चोमी निर्देशक कलाकार राम शेखर नकमिया ख्याल बोज्या याना चोङ्गुदो साहित्यकार कला कमी नकमिया नि छपु छपु ख्याल केनेगो ल्याख उगु ख्याल बोज्या गोसा गोगु गोसा खलक धागु ख नेपाल मजदुर किसान पार्टी नाय नारायणमान बिजुक छे रोहित छगु ज्याजो दोथी ख्याल बोजाय उले ज्या एना दिल ज्याजुले नोना दिसे वेक्ल बहु प्रतिभाशाली राम शेखर नकमी थ गब्ले न मन्हुसे मेप त इति इति निके फुम जनता या त जागरूक या फुम शोषण अन्याय विरोधे चोहीम नाजाम साहित्यकार जुगु बिचा पुङ्का दिल नाट्यकर्मी समाज नेपाले गोसाले लिबाली चोङ्गु आस्था सांस्कृतिक समूह या थिएटरे जुया चुङ्गो ख्याल बुझाए नापाङ्गु दि शनिबार खेल खत्तम वो आइतबार छेराउती ख्याल निवेदनको गुदु बोजाया झोले सोमबार राम शेखर तसुक लोको हागु ख्याल मध्ये छपु 12 बजे हेवे थुङ्कु गुदो अथे मङ्गलबार थौँ खुया त जो जो बुधबार कने तन्त्र ताबले त खस नेपाली भाषा बिहिबार खु शुक्रबार तन्त्र ताबले त शनिबार टुरिस्ट गाइड आइटोबा अस्पताल ज्या सोमबार रानी फुकु ख्याल ह्यबुइगु धागुदो बोज्या दक्ले लिपा मङ्गलबार सीमा त फप सो केनिगु तयारी जुगु गोसा खलक धागुदो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प थौँ व्हाइट हाउसे इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु वो युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेन्स्की नाप बिस्क बिस्क नाप्लागु गोसागु या त गुदु थोनिगु नाप्ला ज्या या त ल्वापु त्वाथलित गु व शान्ति पलिस्ता या कथ महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक कुतय रूप सो या त गुदु व्हाइट हाउस या कथ ट्रम्प नेतृत्व दोथी इरान नाप या लिपाङ्गु तनाव लेबनाम सुरक्षा अवस्था अमेरिका इजरायल रणनीतिक सहकार्य हो मध्य पूर्व शान्ति हो स्थायित्व या विशेष दुग्याङ्क सल जुइगो धागुदो अथवा ट्रम्प जेलिन्स्की दोथी रुस युक्रेन युद्ध या लिपाङ्गो अवस्था युद्ध धङ्केको नीति जुयाचुङ्गु कुटनीतिक कुत या विशेष सल जुइगो धागुदो अमेरिका या सियाटल या स्पेस निडल लिक गोसा गोगु बाइट अफ सियाटल फुड फेस्टिभलले गोली केकुबले सोम सिगुदो चाकेला निम मस्त नाप न्यामा खापा जुगुदो सहर या फायर डिपार्टमेन्ट या प्रवक्ता ग्रेस नुनेज या कथ गोली ल्याव सोम अन्हे सिगु ख सन् 1982 निसे गोसा गोगु बाइट अफ सियाटल सुनियङ्क ज्याजो जुई देपतिक गोसा गोइगु ज्याजुले मुख सङ्गु लाग निएदोम्नु त वैगु पलसा ख्यात गुदु थौँ लुम्बिनी वा सुदूरपश्चिम प्रदेश या तराई लागा या आपल थासे बागमती ओ गण्डकी प्रदेश या तराई लागा या पच्चा थासे ओ कोशी प्रदेश या तराई लागा ओ मधेस प्रदेश या मो थासे नो न्याना वा वैगु थागुदु
लुम्बिनी वो सुदूरपश्चिम प्रदेशिया पहाड़ी वो तराई लागे वो बागमती गण्डकी लिसे कर्णाली प्रदेशिया पहाड़ी लागे छगुनी को थासे मदी को वा वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग थागुदो सोनिकले मिग नि गुगु फ्री खुगु डिग्री सेल्सियस को आज लुगु ख थौ थथे तानोइगु धागुदो सुते न्याता इजुया चिन च्यागु मिनेटे लुगु सूर्दिया सनिलिया नेता इजुया छगु मिनेटे बी नेपाल बासे बुखको चाल शुभ।

0: यी मेरो छोरीको मैसरी
1: आहा,
0: मसँग धेरै पैसा भएपछि मेरो छोरीलाई सहरा गएर भुवावाला पुतली ल्याउने है।
1: हस् मैसरी, ए मैसरी, आमा मैसरी।

sungkyop ten ten ki bazar la mang phenchen po tang den dur ki thopu zogo la sang lon po wak le ki shugep nang wae tim diktim tezin situ kor ki lon khang ki nepal kanun ayog ain ni tong tukjure sum girwa job la ka gozui prastav kyau bide ki masyoda ki korla delo utup miti otang kan tongu ki shua jang wae lon khang ki len khepel ki lon khang ki jinkyong kyau portal tema len tenduk ni ma din nang la mitui mitui tongu ter gola shuwa lon khang ki shetup nang sin bidek la samabesi tang phenchen pu job la mimang ti otang delo utup ti otteri tema tongu dui otu shen wae सुनसरी की देवानगंज की नेतांग तंदाल्या मुडोई गलुप जों की कोरसुंग मपे लाखों की सुनसरी की शेनवाय सकपांगी की पर्ला थंबु शोर सीमा सीधे टडी की तुप्रिम्बाला कोरसुंग मपे की गेपु गोली फोंगने सुनसरी जों की देवानगंज सकपा वडा आंग सुम कप्तानगंज की ओम प्रकाश मेहता नासा गलुपिन सुनसरी ला सकपांगी की पर्ला शुरू थम्बुला सुनक्यप सकपी सकी मिरा च्यांगा तांग तेकी मी मिरा चुचिकला क्यों फोकु जों की छाक्रोक सिडियो पोषण लामी साने की खेतोक नांगसुंग देवानगंज हरिनगरा कप्तानगंज लौकही तंग इनारुआ सखुला मितुई मितिवा थम्बु शोरसीमा कर्फ्यू खेपेल क्याउ शेनवाए राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तेजिन टडिक प्राधिकरण कि यर्बी तुसोला स्वतोक टोकपा डुबान तंग थक दोके कलेङ थोपुतप कि मिमाङतीवाला च्याकपुकी गोला सुवाए प्राधिकरण कि मिमाङतुई सक सुङ्क्योप कि तदोक्ला गोमालारङ च्याकपुकी गोला सु नाङिन फार्सुल फेउसिनाङ गोमाला नाम तङ लाम कि नेताङ कोर्ला खेन्थोकला नेतिरङ फार्सुल फे गोला सुवाए तन्दा यर्बी तुसोला गोमी तुसोला फार्सुल कि तुप म्याङगुला सु ज्ञान ओतु पर्ला चाङबुसोकु म्याङगुला छरोबङी गेकिन ओतु पर्ला नाथुङला सिङ थुडो म्याङगुला तङ चाङबुला चालगेकुला डप म्याङगुला सङ प्राधिकरण कि मिमाङतीवाला सुवाए तुग्राङ क्याने साम्बी खाला तङ चाङबी गाडीला देने पार्गेकु म्याङगुला थाक्रिङबु युग डप पर्ला चिग्रङ डप म्याङगुला रङजुङ कले कि थपाचुङ सिङ सुङक्योप ओतुप दासाला डोगौला तङ साने देशन प्रशासन तङ सुङक्योप लेचतपातीवाला डेलो जोगौला सङ प्राधिकरण कि सुवाए तुग्राङ क्याने दागदगपी खाङबी गाडीगुरीला ओतुप डल्तिव सेङे जोगौला यर्बी तुसोला रुल्की फेतु नेताङ बङी उङुप तपकी खाङ बी गाडीगुरी सेङ्गे जोगौला सङ मिमाङतीवाला सुवाए तुक्राङ क्याने खाक्सन बोइगी खाक्सन बो म्यान तङ तुसोरिङ बुसेक नामडौ समात्यो ज्वाला नाङला सुङक्योप क्याने जोगौला मोबाइलला गौसोइ ब्यालेन्स लुङने जोगौला तङ ब्याट्री सङ चार्ज क्याने जोगौला प्राधिकरण कि लेन तङने मिमाङतीवाला सुवाए सोङडिल आपूर्ति तेजिन उपभोक्ता सुङ्क्योप सकी प्रतिबन्ध गेपु चालक त्यो चुङ्गु म्याङगुला सुवाए निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन नितोङ चुक्सुम नङसिन सकी प्रतिबन्ध गेपु चालक त्यो ठिम्की खप्तेला गल्ने चुङ्गु म्याङगुला डेलो उतुप त्यो तेरिला सुवाए ठिम्की केकु चालक त्यो रङ्युल साङ्छी गेल्ला चौङ्गे सिंह पैठारी नियन्त्रण ऐन नितोङ चुक्सुम उपभोक्ता सुङ्क्योप ऐन नितोङ दिन्छु थोङ्गा नङसिन ठिम तोङ्गुप सकी सेतुबिन तुग्राङ क्याने सकी सोङकाङ त्यो न्यामसिप कितुप लाकासङ हुर्ता क्याने किओतुप सेनवाए सोङकाङ तिओ ठिम नङसिन जिङक्योङ माक्यो ङेसिङ उपभोक्ता सुङक्योप ऐन नितोङ निन्चुथोन ङा तेजिन उपभोक्ता सुङक्योप नियामावली नितोङ निन्चुथोन टुप नङसिन ठिम तङ्गुप सकपी सेतुबिन बजार ङ्यामसिप किओ सकपी दाङ सोङकाङ गु अनुगमन क्याने नेताङ यर्गे तङ्गुपला निर्देशन बिन्दुप सेनवाए महान्यायाधिवक्ता कि ल्याखुङ कि थेङजी कि लोङ कि रणनीतिक छर्सी खेपेल क्यान वाय हारिङ कोरी क्याउ सर्गोत्पी ल्याङजोमला महान्यायाधिवक्ता डाक्टर नारायण दत्त कण्डेल कि साउन लाकी गते ताङबोने जुन लगलेन चुङ्गुप छर्सीला फेन्छेन पो जब संवैधानिक तेजिन ठिम कि शिला टडी कि तुप ताङ दलेन लक्ष्य ताङ भौतिक पूर्वाधारला खाक्सन पोसिउ खेन्तोक नाङसुङ महान्यायाधिवक्ता कि क्योन फोकु ताङ कल्यला सोरु मितिवाला कुन्सप कि टडिक ताङ राहत कि टडी कि तुप लाका गोजु खेन्तोक नाङसुङ नारायणगढ मुगलिन लामला टोक्पा गेप्सीमा डिम्रुल गाडी त्यो जिङक्योङ कि माथु पु सेनवाए इच्छा कामना युल सक्पा वडा आङ दिनला औ टोक्पी जोसालेन्सी लाम जिङक्योङ कि माथु पुइन् दिपारलाराङ जोङकी ट्राफिक कोर्सुङमाकमी ल्याखुङ कि इन्सपेक्टर सु अनिल थापा कि टोक्पा दोने लाम जिङक्योङ क्याउ खेन्तोक नाङवाए टोकपाला स्वर्ने लमजुङ जोङकी मध्य नेपाल टोङ्केर वडा आङ दिन बाट बेरिला खाङबा चिकित्रङ मिराङी नासागलवाए हारिङ टोप्ला वाउ टोकपी जोसालेन्सी खाङबी खाङबा रम्सीमा लोङपचुङ आगुकी टिक बहादुर बिका तङ खोङकी पुम बिनिता बिका नासागलुप इलाका कोर्सुङ मक्मी ल्याखुङकी इन्सपेक्टर ध्रुव प्रसाद शर्माकी खेन्तोक नाङगुपिन तुग्राङ क्याने टोकपाला स्वर्ने बिकाकी पेर्मी सुकमाया तङ पुम्ला साङ क्योन फोकु तङ मेन्जु कितुप्रिम्बाला तन्दोक्ला मेनखाङला तङ्गुप कोर्सुङ मक्मीकी सेनु
ग्याल्खाप नाङला आरिङसङ नाम यौ मौसम पूर्वानुमान महाशाखा कि सेनवाय महाशाखा कि सेतुप नाङसिन खाङरी ताङ फुसाखुला नाम यौ सेनवाय सिसी दासा लालाला थक ताङ डुगेको सेनवाय बागमती गण्डकी लुम्बिनी ताङ कर्णाली प्रदेश कि खाङरी ताङ फुसाखुल कि दासा लालाला छरबङ्गी गेकिन होतुप न्याताङ होतुप सेनवाय दुग्राङ क्याने आरिङ गमु नाम यौ थक ताङ डुगेको ताङ छर गेक्तु पुतप कि मिमाङ तेउला च्याकपुकी गोलासङ मौसम पूर्वानुमान महाशाखा कि सेतुबिन रेडियो नेपाल आरिङ कि सेरिके कि साङ्गिर डुब्सुङ तुझी छे।

लाख रास्ते काटो पानियों को बहना है, बाग की हवाओं में तितलियों को रहना है, उन लबों पे सिसकी है नफ़रतों की बेड़ी नहीं, इज्जतों के गहने दो आदमी के फर्जंदो, अब ये घाव सीने दो औरतों को जीने दो। सामीन, अभी आप अहमद फरियाद साहब के चंद अशआर सुन रहे थे। अब इसके बाद फिर पेशे खिदमत है एक नात शरीफ हाफिज़ अबू बकर की आवाज़ में, जिसकी फरमाइश की है आतिका अंसारी जिला सुनसरी से, जिसका बोल है किसी मजलिस में जब नाते शह आलम सुनाते हैं फ़िज़ाएँ रश्क करती है फरिश्ते झूम जाते हैं।

0: पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार,
1: थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल
2: मुडवादी अमेरिकी आक्रमणको परिणाम स्वरूप स्ट्रेट अफ हर्मुजमा उत्पन्न भएको असुरक्षा हटाउन आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिएका छन्। रेडियो नेपालबाट साँझ 5 बजेको समाचार सकियो। हवस् त नमस्कार।
3: हामी रेडियो नेपालको बागमती प्रादेशिक प्रसारणबाट बोलिरहेका छौँ। अब सुन्न सक्नुहुनेछ तामाङ भाषामा समाचार।
4: लसो फ्याफुल्ला तिनी मन्जुश्री सम्म 2862 तालो गोडे लाला छेपाच्युई सेब्ली विक्रम सम्म 2083 साल साउन लाला छेपाच्युई सेङी मिरे मङ्गलबार चु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ साङ्गुरी राङ्दा डेनमुला ङा सूर्य मोक्तान लुई सेवा रङमा संवेदनशील थुम्री खाजिबेनुन खाल्ला अवरोध आलाबारी लुई थेन चपासे स्वच्छता ब्लोनकाङ से मोइजेन लापमुला डाक्टर गदेसी तिनी आकस्मिक अर्थात् इमर्जेन्सी बिमा स्यान सेवा ढुङसेला मुला बेसी पाङमाला पाइन्नुन बोनखाङलाई रोसुङबोन डाक्टर समीर कुमार अधिकारी से लुई सेवा लामन संवेदनशील मिला लुई सोनालाबारी पिन्नुन तोबा सेवा थेन बिरानी हुल्बा से याङनुन तोबा लुई सेवालाई याङतामदा सोनालाबारी थेन डाक्टर कादिसेनुन सुरक्षित थेन सम्मान ल छ्याम्रे गेलाबारी खम्बा वातावरण सोसी पिनमारी बेनादन मोइजन लासी बहिन्ना रोसुङबन अधिकारी चाहिँ छिबा कागुरी डाक्टर गदेदा गेलाबा ग्लारी तोबा ग्याङमा लाबा घटनालाई फेरि ब्लोनखाङलाई ध्यान छेङसी जिनमा चाहिँ दोषीदा ठिम अनुसार कारवाही लासेला मुला बेसे सुङसुबमुला निबक काम्रे शनिबार कुनु बिरगन्जला नारायणी अस्पताल डी गेलाबा डाक्टर गदेदा अस्पताल नाङ्रिन तोबा ग्याङमा लाबा चाहिँ सुरक्षा पिनमारी मोइजन लाबन तिनी हिल्ला बेनन लुई गेन्दुन ढुङबमुला बिरगन्जला नारायणी अस्पताल डी डाक्टर द तोबा ग्याङमा लाबालाई विवाद छैन लाबारे आखाम्बा लिचा हिउल क्योङलान लुई सेवा तिनी प्रभावित सिटी बहिन्ना घटनालाई विरोध लाभन नेपाल चिकित्सक सङ्घ सहित तिनी हुल्क्योङ निन सरकारी गैर सरकारी थिए निजी अस्पतालका धेरै इमर्जेन्सी सेवा बिमा स्यान बिरान सेवा ढुङसी पिनमा बोला हुल्क्योङ लान अस्पताल ढुङमा लिच आखाम्बा मिसे सेवा किनमारे आम्याङना टिपा दुरी भरतपुर अस्पताल डि चेकेन्तोङ चुइसे गिक बिमा लामा आखाम्बा मिसे तिनी सेवा किनमारी आम्याङबा बोला चुनन ताङरी काम्रे शनिबार कुनु डाक्टर गदेदा लाभा आक्रमणलाई विरोध लाभन बिरगन्ज रिमोबा नारायणी अस्पताल ला मेन्दो भे चुइसे ढुचुइसे भे डाक्टर गदेसे सामूहिक राजीनामा पिनमा बोला डाक्टर गदेसे अस्पताल ला गेतेनमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चित्तरञ्जन साहदा तिनमा थिन तिनीलाई चाहिँ मेन्दो ढुचुइसे भे डाक्टर गदेसे सामूहिक राजीनामा पिनमा हिन्ना सुङबोन डोलप्रसाद अरियाल से प्रतिनिधि सवारी बोकिनमा बेनन ग्लेटिम दल्ला ग्रेन सचेतक थिएन स्यान सचेतक कादे थिएन तिनी काठुइला शुभमुला निबा असार लाला सोमचुइसे गी कुन हेन्से आसेङबा प्रतिनिधि सभाला चिसाङ चुनुन साउन लाला चुइसे ब्ली कुनु टिबा बिमा गाछा सुङबोन अरियाल से ग्लेटिम दल्ला ग्रेन सचेतक थिएन स्यान सचेतक कादे दुइसे काठुइला शुभहिन्ना काठुइली छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाला संसदीय दल्ला सचेतक क्रान्ति शिखा धिताल से सातङी लिछा टिबारी छेब सदन खाराङलासी प्रभावकारी सोबारी खाम्ला बिबा ताम्रे काठुई लाबा मुबा विषय सुङबमुला सचेतक दिताल्ला अनुसार खाबरेरी संसदीय गे सूची लामा खाबा थेन संसद लामन व्यस्त तसेला मुला विषय सुङबन से सुङबताम सुङसुबमुला वाणिज्य आपूर्ति थिएन उपभोक्ता संरक्षण विभाग से चुङमारी काबा सेगदे चुङसे आपिनमारी मोइजन लापमुला निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन 2013 अनुसार विभाग से चुङमारी काबा सेगदे युल्ला ठिम्दन नाङसी चुङसे आपिनमारी बेनादन मोइजन लापहिन्ना चुरानुलासी विभाग से बजार द स्वच्छता कायम थानमारी अनुगमन थिएन निरीक्षण लासेलामुला बिसिनन पाङबमुला विभाग से उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 थिएन उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 2076 अनुसार बजार दा निर्देशन पिनमा थिएन कारवाही लाभा गेन लासेल मला विषय पाङबा मला नोर्बोन डाक्टर स्वर्णिम वागले चाहिँ पुँजी बजारला दिगो विकास लाबारी नेपाल धितोपत्र बोर्ड चाहिँ गुणस्तरीय नियमन लाबन राङला जिम्मेवारी दा प्रभावकारी सोभारी निर्देशन दोन्छ्यो बम्बला नोर्बोन डाक्टर वागले चाहिँ नैतिक पारदर्शी थिएन लगानी लाबाका दिँदा च्यासी गेलाबारी बोर्डलाई गोबाङदा निर्देशन दोन्छ्यो बहिन्ना नोर्बोन डाक्टर वागले चाहिँ छारचोहो नियुक्ति लाबली छ बोर्ड चाहिँ ज्याबा गेलाबारी माइबसे दान्दे बजारले ज्याबा प्रभाव नाङमन खाबमुला विषय सुङ्छ्यो बम्बला चुनाउनुलाई चाहिँ नोर्बोन डाक्टर वागले चाहिँ बोर्डलाई जिम्मेवारी, नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई तेन उन महत्वपूर्ण तापमुला विशेष सुङसुमान छार थिम सुबाथे नियमन लबा दुरी बेनान सरोकार थान्मा कादेथेन काठुइलासि गेला बरिनुन मोइजेनला शुभमुला सुनसरी जुङ्गा देवानगञ्ज रिताबा घटना लिचाठुङमा परिस्थिति ग्वालेसे सामान्य तापमान

खाप मला भिसे जुङ प्रहरी गेदिम सुनसरी सेपाङ बमला थेर्लान गुर्मी समूहला झडप्री गुङरी झडप्तामा थेदा नियन्त्रण नबरे प्रशासन से रोपा गोली टासी सुनसरी जुङला देवानगंज गाउँपालिका सोम कप्तानगंज विवग्लाल ओम प्रकाश मेहता शिवमोबा थे घटनारी परदशी सुरक्षा फौजला मेन्दो चुइसेङा थेन्थेनुन ग्लाला मेन्दो चुइसे गिकैमी घाइते तबमला बिसे रोग्रेन जोङ अधिकारी पोषण लामी छाने से सुङसिबमला सुनसरीला देवानगंज हरिनगरा कप्तानगंज लौकही इनरुवारी तोडफोडला पनि मेथीबली छ थेथुम्री कर्फ्युला बमला ताङ गुङरी जोङ प्रशासन गेदिम मोरङसे जोङनाङरी डिजेला प्रयोग आलाबारी सार्वजनिक सूचना छिब मुला सूचनारी जोङरी सङमा मेला महोत्सव बेलसाङ पार्टी प्रिवा धार्मिक गेखुड रङमा खाजिबेनुन ग्लारी गाछन् स्वीकृति आकिन्नाथिन स्यान सूचना आँखादे धोनादा डिजेला प्रयोग आलाबारी मोहिजन लाभन डिजेला प्रयोग लासम ठिम अनुसारला कारवाही लासेल मुला विषय पाङबा मुला नेपाली काङ्ग्रेसलाई गोबन थिन रोकाइब्लुन गोपालमान श्रेष्ठ तिनी डोङबमला गोबन श्रेष्ठ जाउला खेल्ने मुबा हेलियस हस्पिटल मालाबा ताङ्रे तिनी दिनेरी डोङबा मुला बिसी नेपाली काङ्ग्रेसलाई सुङबुन देवराज चालिसेसे सुङबा हिन्ना गोबन श्रेष्ठलाई शिव लोहिरो नाङ्गर पार्टीलाई मियो गेदिम सानेपारी श्रद्धाञ्जली पिनमारी थान्बाली छ पशुपति आर्य घाटी मे पिनमारी बोर्सेल मुला बिसिनन् पार्टी सुङबुन चालिसेसे सुङबा मुला लोफखाङ्कदेरी दिनेरी पिनमान खाबा दिगु सम्बन्धीला दिङ्घिकला प्रतिवेदन 2025 तिनी सार्वजनिक लापमुला चाबसे सुरक्षा पोषण स्याहार जलवायु उत्थानशीलता थिन सामाजिक सुरक्षा त कोङ्ब सुबारी खाम्बा तान्दा किन्से शोभा प्रतिवेदन दा नेपाल सरकार थिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घला मुख्युल चाबसे गेखोर WFP से तिनी याम्बरी गोर्केको गेखोर सङ्घसे प्रतिवेदन दा सार्वजनिक लाभ हिन्ना थिम न्याय थिन संसदीय मामिला ब्लोनखाङसै नेपाल थिम आयोग ऐन 2063 संशोधन लाबारी प्रक्रिया तिबन प्रस्तावित विधेयकला मस्यौदालाई फेरि बेनानी हुलवाला सुझाव रिपमला ब्लोनखाङसे गोर्खेका सूचना छिसे ब्लोनखाङसेन सेङमान खाबा सुझाव पोर्टल ल फिडब्याक .molgpa.gov.np सातकिक नाङरी राङराङला सुझाव पिनबारी मोहिजन लाबमला ब्लोनखाङला अनुसार विधेयक दा समावेशी प्रभावकारी थिन व्यवहारिक सवारी बेनानी हुलबा थिन सरोकार थान्बाका देला सुझाव रिबारी छे बहिन्ना ओसम लमजुङ जोङला मध्य नेपाल नगरपालिका निस भाटबेसी विभागलारी खाबा ढुइरी पलप्तसे दिमगिग्लन आबथेन जामे शिवमुला तिनी छोरी खाबा ढुइसे दिम फुप्न लामा मध्य नेपाल निस भाटबेसी विभागलाला घाँचुइसे कुदिङला आपा टिकाबहादुर बिकथिन जामे च्याङबा विनिता बिक शिवमुला बिसे इलाका प्रहरी गेदिम भोर्लेटाला प्रहरी निरीक्षक दुर्व प्रसाद शर्मा से सुङसिब हिन्ना ढुइरी परप्तसे बिकल माइमा सुकुमाया थिन जामे ग्रेन अस्मिता घाइते तपासे दान्दे अस्पताल निमानला पनि मुला बिसे प्रहरी से पाङबमुला चुरुनगुङरी नारायणगढ मुगलिन री तिनी छोरी ढुइ खासी ढुङमा ग्याम दान्दे ठङबा मुला बिबा साङ्गुर खाबा मुला इच्छा कामना गाउँपालिका निश्री तिनी छोरी ढुइ खाबासे थे ग्याम ढुङबा मुबा धन्देराङ सिंह यान्सुजी तामाङ साङ्गुर रेडियो नेपाल ज्ञानमा लासेको तिनी द फेसिडिला लासो फ्याफुल्ला

ई रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासा सुनल जा मैथिली भाषामे समाचार। सभामुख डोल प्रसाद आर्याल प्रतिनिधि सभा के विभिन्न राजनीतिक दल के मुख्य सचेतक तथा सचेतक सब संग सदन के प्रभावकारी व्यवस्थित और मर्यादित रूप में संचालन करवाक विषय में आई विचार विमर्श कलने। विचार विमर्श में आवे वाला साउन 14 गते से शुरू होवे वाला प्रतिनिधि सभा बैठक के प्रभावकारी और परिणाममुखी बनेबाक सरकार से पर्याप्त बिजनेस उपलब्ध करेबाक तथा सदन के गरिमा मर्यादा कायम रखबाक विषय में विचार विमर्श भेल छल। विचार विमर्श पश्चात संचारकर्मी सब संग बातचीत करते राष्ट्र स्वतंत्र पार्टी के सचेतक प्रकाश चंद्र परियार संसद के मर्यादा मूल्य मान्यता कायम करते सदन के परिणाममुखी बनेबाक विषय में विचार विमर्श भेल बतौलन। ओ सत्तारूढ़ प्रमुख प्रतिपक्ष तथा विपक्ष दल अपन जिम्मेवारी पूरा करते जनता के आकांक्षा के संबोधन करबाक लेल संवेदनशील हेबाक चाही पर जोर दिलन। सरकार पर्याप्त बिजनेस देवाक प्रतिबद्धता जनौला से दसई से पहिने धर सदन संचालन करबाक विषय में सेहो विचार विमर्श भेल बतौलन। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के सचेतक युवराज दुलाल सदन के मर्यादित आ व्यवस्थित रूप में संचालन करबाक लेल प्रत्येक दल के भूमिका के संदर्भ में विचार विमर्श भेल जानकारी दिलन। रासपा के दोसर सचेतक क्रांति शिखा धीताल 2 हफ्ता के विश्राम पश्चात साउन 14 गते से सदन संचालन भेला से अय के आर प्रभावकारी बनेबाक विषय में विचार विमर्श केन्द्रित रहल जानकारी दिलन। सत्ता पक्ष आ विपक्ष बीच देखल गेल असहमति के विषय में सहमति में पहुंचे के प्रयास भ रहल जानकारी दैत सचेतक धीताल 3-4 दिन भीतर सहमति में पहुंचलाक बाद सदन के शांतिपूर्ण रूप में आगू बढ़ेबाक विश्वास सेहो व्यक्त कलन। विचार विमर्श सकारात्मक रूप में आगू बढ़ रहल आ सरकार सबके अछि अ विश्वास के वातावरण निर्माण करबाक काज भ रहल ओ बतौलन। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्रालय नेपाल कानून आयोग ऐन 2063 संशोधन के प्रक्रिया आगू बढ़ावित प्रस्तावित विधि के मस्यौदा में सर्वसाधारण संग राय तथा सुझाव मांग कलक अछि। मंत्रालय सोम दिन सूचना जारी करत मंत्रालय द्वारा संचालित सुझाव पोर्टल मार्फत प्रकाशन भेल समय से 1 हफ्ता भीतर अपन राय तथा सुझाव उपलब्ध करेबाक लेल आग्रह कलक अछि। मंत्रालय के हिसाबे विधेयक के थप समावेशी प्रभावकारी और व्यवहारिक बनाब नागरिक तथा सरोकार वाला पक्ष के सहभागिता सहित सुझाव संकलन कर लागल अछि। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री शोभिता गौतम सरकारी विधेयक के तर्जुमा प्रक्रिया के थप संस्थागत आ उत्तरदायी बनाब नेपाल कानून आयोग के सुदृढ़ बनेबाक तैयारी कायल गेल बतौलन। ओ कानून तर्जुमा परामर्शदाता तथा बाह्य न्यायिक निकाय तरफत आयल मस्यौदा निर्माण के अभ्यास अंत का आवे वाला दिन में सरकारी विधेयक के मस्यौदा कानून आयोग से तैयार करबाक व्यवस्था कर लागल स्पष्ट कलन। मंत्रालय बीतल समय कानून निर्माण प्रक्रिया के थप सहभागी मूलक पारदर्शी और उत्तरदायी बनेबाक नीति अनुसारे विभिन्न विधेयक के मस्यौदा में सर्वसाधारण से राय तथा सुझाव संकलन करबाक अभ्यास के निरंतरता देता अछि। ऐसे कानून निर्माण में नागरिक के सहभागिता बढ़वाक आ गुणस्तरीय कानून निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान पहुंचत से मंत्रालय के विश्वास अछि। एहि बीच वह मंत्रालय आर्थिक वर्ष 2083-84 के कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष के रूप में मनेबाक घोषणा कलक अछि। स्वास्थ्य सेवा जेहन संवेदनशील सेवा में कोनो प्रकारक अवरोध नहि करबाक लेल स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय आग्रह कलक अछि। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सब आइ आकस्मिक बाह्य सेवा संचालन नहि करब घोषणा कलाक बाद ई उक्त मंत्रालय के सहप्रवक्ता डॉक्टर समीर कुमार अधिकारी ई आग्रह कलने अछि। वाय प्रकाशन के विज्ञप्ति में स्वास्थ्य सेवा के संवेदनशीलता चिकित्सा पेशा के गरिमा तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के आत्मसात करत नागरिक के उपचार सेवा में कोनो अवरोध नहि अयबाक वातावरण कायम कऽ निर्बाध रूप में स्वास्थ्य सेवा प्रवाह करबाक लेल सब अस्पताल के मंत्रालय अपील कलक अछि। सहप्रवक्ता अधिकारी स्वास्थ्य सेवा अत्यंत संवेदनशील जीवन रक्षक अत्यावश्यक सेवा अछि कहत नागरिक के स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करय वाला अधिकार के संरक्षण करब तथा स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित आ सम्मानजनक वातावरण में सेवा प्रदान कर पाएब स्वास्थ्यकर्मी के अधिकार आ सब नागरिक के सजिया दायित्व रहल सेहो विज्ञप्ति में उल्लेख कलन अछि। विज्ञप्ति में अय मंत्रालय के चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था में भेल मारपीट तथा दुर्व्यवहार के घटना प्रति गंभीर ध्यानाकर्षण भेल आ दोषी के कानूनी दायरा में आनल जात से बताल गेल अछि। गत शनि दिन वीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सब अस्पताल में आक्रमण भेल कहत सुरक्षा के मांग करत संघ बंद के आह्वान कलक अछि।
लैंगिक हिंसा, जातीय विभेद, छुआछूत तथा सामाजिक बहिष्कार और संबंधी उजुरी के प्रभावकारी संबोधन के लिए महिला बाल बालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक आ सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय तीन मंत्रालय संग समन्वय के पहल कलक। मंत्री सीतावादी मंत्री स्तरीय निर्णय हिसाबे गृह मंत्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के आवश्यक सहजीकरण, कानूनी सुधार आ स्थानीय तह धरि सेवा प्रभावकारी बनावा औपचारिक पत्रचार कैल गेल मंत्रालय जनौलक। मंत्रालय अंतर मंत्रालय समन्वय सँ पीड़ित मैत्री, प्रभावकारी आ विभेद रहित सेवा तथा न्याय सुनिश्चित होबाक विश्वास व्यक्त कैलक। महिला मंत्रालय गृह मंत्रालय संग लैंगिक हिंसा, जातीय विभेद, छुआछूत तथा सामाजिक बहिष्करण संबंधी उजुरी के शीघ्र प्रभावकारी आ विभेद रहित संबोधन सुनिश्चित करबाक लेल सुरक्षा निकाय आ जिला प्रशासन कार्यालय बीच समन्वय करबाक लेल आग्रह कैलक। अहिना लैंगिक हिंसा, जातीय विभेद, छुआछूत तथा सामाजिक बहिष्करण के विषय एकैटा निकाय के प्रयास सँ मात्र समाधान नहि भऽ सकबाक कारणे अंतर मंत्रालय समन्वय सजिया जिम्मेवारी एकीकृत कार्य सम्पादन मार्फत पीड़ित समय में न्याय सेवा प्राप्त करय वाला वातावरण निर्माण करब एहि पहल के मुख्य उद्देश्य रहल बताल गेल अछि। वाणिज्य

0: करबाक लेल आग्रह कयलक अछि। निकासी पर ठाढ़ी
1: कानून बाबजूद दंडनीय रहल सो खाद्य कार्यक्रम के आय आयोजना के कार्यक्रम सार्वजनिक कलक अछि। राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर गुड़कर भट्ट, सुदूर पश्चिम प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्री बील बहादुर राणा मगर, नेपाल के लेल फिनलैंड के

भीड़ घायल भेल। डॉक्टर प्रमोद राम के थप उपचार के लिए सोमदिन ट्रामा सेंटर काठमांडू पठाल गेल अछि। अहि बीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर समीर कुमार अधिकारी विज्ञप्ति जारी कर कोनो भी अवस्था में स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध नहि करबाक लेल आग्रह कयलनि अछि। सुनसरी जिला में घटल घटना के लकर सामाजिक सद्भाव में पड़ सकबाक असर के ध्यान में रखकर जिला प्रशासन कार्यालय धनसा के अगुवाई में आज जनकपुर धाम में सद्भाव बैठक सम्पन्न भेल अछि। जिला सामाजिक सद्भाव सर्वपक्षीय समिति के बैठक में पहिनहुँ से स्थापित भेल सामाजिक सद्भाव के अक्षुण रखैत नेपाल के पहचान के रूप में रहल बहुभाषिक बहुजातीय बहुधार्मिक युक्त सहिष्णु समाज के राष्ट्रीय पहचान के कायम रखकर जिला भीतर सामाजिक सद्भाव कायम रखबाक सहमति भेल अछि। छह बुंदे अन्य सहमति सब में जे अनुसार जिला तथा सदर मुकाम अवांछित गतिविधि रोकक लेल विभिन्न धर्म समुदाय के संगे नागरिक समाज के अगुआ बुद्धिजीवी राजनीतिक दल संघ संसद तथा स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि सब निरंतर पहल करबाक निर्णय भेल अछि। एक समय लक्ष्य से 182% से अधिक राजस्व संकलन का चर्चा में रहल जलेश्वर भंसार कार्यालय राजस्व असूली बीतल 4 वर्ष निरंतर नीचा खसल अछि। पेट्रोलियम पदार्थ के आयात ठप हैब कृषि अग्रिम कर खारिज होब तथा यातायात के संरचना में आयल परिवर्तन के कारण राजस्व संकलन में उल्लेखनीय गिरावट आयल भंसार कार्यालय जनौलक अछि। गत 5 आर्थिक वर्ष के तथ्यांक जलेश्वर भंसार के लक्ष्य वास्तविक असूली बीच के दूरी बढ़त गेल देखबैत अछि। लक्ष्य सेहो घटाकर निर्धारण कयल गेल बावजूदो अपेक्षित राजस्व संकलन होब नहि सकला से भंसार के कार्य सम्पादन ऊपर प्रश्न उठय लागल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की आ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संग आइ व्हाइट हाउस में अलगे अलगे उच्च स्तरीय वार्ता करबाक कार्यक्रम तय भेल अछि। यूक्रेन युद्ध, ईरान संग के तनाव तथा पश्चिमी एशिया के सुरक्षा अवस्था ई भेंटवार्ता के मुख्य एजेंडा रहल रहस्य अपेक्षा कयल गेल अछि। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हिसाबे ट्रंप जेलेंस्की भेंटवार्ता मुख्य रूप में रूस यूक्रेन बीच जारी शांति प्रक्रिया में केंद्रित रहत। अधिकारी अब युद्ध अंत करबाक समय आयल धारणा व्यक्त कयलनि। एम्हर ट्रंप और नेतन्याहू बीच के वार्ता में ईरान संग के द्वंद, इजराइल लेबनान वार्ता के प्रगति तथा अब्राहम समझौता विस्तार के विषय में प्राथमिकता में रहत। सोमदिन पत्रकार सब संग बातचीत करते ट्रंप ईरान के किछ विषय में नेतन्याहू संग सामान्य मतभेद भेल बावजूदो दुनू देश बीच के गठबंधन अत्यंत निकट रहल बतौलनि अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सदन को प्रभावकारी और परिणाममुखी बनाने के विषय में सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने किया राजनीतिक दल के प्रमुख सचेतक और सचेतकों के साथ विचार विमर्श। कर्णाली प्रदेश में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मंगल बहादुर शाही मुख्यमंत्री पद पर हुए नियुक्त। लुम्बिनी प्रदेश में नेपाली कांग्रेस ने सरकार को दिया हुआ अपना समर्थन लिया वापस। स्वास्थ्य सेवा में अवरोध न करने का स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय ने किया आग्रह। और जापान के क्यूशू टापू में शक्तिशाली भूकंप, कई लोग मलबे में दबे होने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने प्रतिनिधि सभा के विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों और सचेतकों के साथ संसद को प्रभावी, व्यवस्थित और गरिमापूर्ण ढंग से संचालित करने के विषय में चर्चा की। बैठक में 30 जुलाई से शुरू होने वाले प्रतिनिधि सभा सत्र को प्रभावी और परिणाममुखी बनाने, सरकार से पर्याप्त विधायी कार्य उपलब्ध कराए तथा सदन की गरिमा बनाए रखने पर विचार विमर्श हुआ। संसदीय सुनवाई समिति ने आज निर्वाचन आयुक्त पद के लिए प्रस्तावित गुरुप्रसाद वागले और डॉ. राजीव सुब्बा की अलग अलग सुनवाई की। गुरुप्रसाद वागले ने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों के साथ समन्वय और संवाद को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने संविधान, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, विधि के शासन और सुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने निर्वाचन आयोग को सक्षम, स्वतंत्र, निष्पक्ष, पेशेवर और विश्वसनीय संस्था के रूप में विकसित करने तथा चुनाव प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और किफायती बनाने को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि जन्म, मृत्यु, विवाह और बसाई सराय के अभिलेख मतदाता सूची से डिजिटल रूप से जुड़े नहीं होने के कारण मतदाता सूची वास्तविक संख्या से बड़ी हो गई है। प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त डॉ. राजीव सुब्बा ने कहा कि वे संविधान और कानून का पूर्ण पालन करते हुए तथ्य, प्रमाण और विधि के शासन के आधार पर निर्णय लेंगे। समिति के सभापति बोध नारायण श्रेष्ठ ने बताया कि समिति बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त पद के लिए अनुशंसित मान बहादुर कार्की की संसदीय सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि संवैधानिक परिषद ने 3 जुलाई को मान बहादुर कार्की को मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा डॉ. राजीव सुब्बा और गुरुप्रसाद वागले को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने की सिफारिश की थी। सुनसरी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन कार्यालय ने पूर्व पश्चिम महेंद्र राजमार्ग तथा इनरुआ बाजार क्षेत्र में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। स्थानीय प्रशासन अधिनियम 2028 के तहत आज दोपहर 3:30 से अगली सूचना तक कर्फ्यू लागू रहेगा। मुख्य जिला अधिकारी स्वरी प्रसाद अर्याल द्वारा जारी आदेश के अनुसार कर्फ्यू क्षेत्र में आम नागरिकों की आवाजाही तथा किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, प्रदर्शन, बैठक और घेराव पर प्रतिबंध रहेगा। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा ने सुनसरी सहित पूर्वी जिलों में हाल ही में हुई संवेदनशील और दुखद घटना तथा उससे उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के प्रति अपना गंभीर ध्यानाकर्षण जनाया है। पार्टी सभापति रवि लामिछाने द्वारा जारी विज्ञप्ति में घटना में जान गंवाने वालों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। साथ ही घटना में घायल हुए सभी नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दल के नेता मंगल बहादुर शाही को कर्णाली प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी ने संविधान के अनुच्छेद 168(2) के तहत उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया। प्रदेश प्रमुख कार्यालय की सूचना अधिकारी मनमाया काउजा ने उसकी जानकारी दी। शाही ने आज शाम 5 बजे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के समर्थन से सरकार गठन का दावा पेश किया था। उनका शपथ ग्रहण बुधवार को होगा। लुम्बिनी प्रदेश सरकार से नेपाली कांग्रेस बाहर हो गई है। सरकार को दिया गया समर्थन वापस लेते हुए कांग्रेस के 5 मंत्रियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। नेपाली कांग्रेस संसदीय दल की सचेतक धनलक्ष्मी श्रेष्ठ ने मुख्यमंत्री चेतनारायण आचार्य को समर्थन वापसी का पत्र और मंत्रियों के सामूहिक इस्तीफे सौंपे। इस्तीफा देने वालों में शहरी विकास एवं पेयजल मंत्री सरोज थापा, आर्थिक मामलों एवं योजना मंत्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग पर्यटन एवं परिवहन मंत्री प्रचंड विक्रम न्यूपाने, सामाजिक विकास मंत्री जन्मजय तिमल सिन्हा तथा वन एवं वातावरण मंत्री देवकरण प्रसाद कलवार शामिल है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने लोकतान्त्रिक आन्दोलन के योद्धा एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री गोपाल मान श्रेष्ठ के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की स्थापना और पुनर्स्थापना के संघर्ष में श्रेष्ठ का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। इस बीच नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने भी वरिष्ठ नेता श्रेष्ठ के निधन पर शोक व्यक्त किया। पूर्व प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस के पूर्व सभापति शेर बहादुर देवा ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। नेपाली कांग्रेस के नेता गोपाल मान श्रेष्ठ का आज 79 वर्ष की आयु में जावलाखेल स्थित हेलियस अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। स्वास्थ्य एवं खाद्य स्वच्छता मंत्रालय ने स्वास्थ्य जैसी संवेदनशील सेवा में किसी भी प्रकार का अवरोध न पैदा करने की अपील की है। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा आज आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाएं बंद रखने की घोषणा के बाद मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉ. समीर कुमार अधिकारी ने यह अपील जारी की है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी अस्पताल अपनी सामाजिक और पेशेवर जिम्मेदारी निभाएं। सूचना एवं संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि सरकार गैर आवासीय नेपाली NRN समुदाय के ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी और पूंजी को देश के विकास से जोड़ने के लिए नीतिगत, कानूनी और व्यवहारिक सुधारों को प्राथमिकता दे रही है। आज सूचना एवं संचार मंत्रालय में गैरावासीय नेपाली संघ NRNA के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में मंत्री डॉ. तिमल सिन्हा ने कहा कि सरकार देश में निवेश अनुकूल वातावरण बनाने के लिए आवश्यक सुधारों को आगे बढ़ा रही है। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय ने नेपाल कानून आयोग N 2063 में संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए प्रस्तावित विधेयक के मसौदे पर लोगों से राय और सुझाव मांगे हैं। मंत्रालय ने सोमवार को एक सूचना जारी करते हुए मंत्रालय द्वारा संचालित सुझाव पोर्टल के माध्यम से प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के भीतर अपनी राय और सुझाव उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। मंत्रालय के अनुसार विधेयक को अधिक समावेशी, प्रभावी और व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से नागरिकों तथा संबंधित पक्षों की सहभागिता के साथ सुझाव संकलन किया जा रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जापान के दक्षिणी हिस्से में स्थित क्यूयूसु द्वीप के कुमामोतो क्षेत्र में मंगलवार को शक्तिशाली भूकंप आया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। भूकंप के बाद कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कुछ स्थानों पर लोग मलबे में फंसे होने की आशंका जताई गई है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र में कुमामोतो प्रांत का कसीमा शहर शामिल है, जहां एक बड़े शॉपिंग सेंटर का एक हिस्सा ढह गया है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार वहां कई कर्मचारियों और लोग फंसे हो सकते हैं, जिनके लिए बचाव अभियान जारी है। भूकंप के बाद कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित, आग लगने की घटनाएं और सड़कों, पुलों तथा अन्य संरचनाओं को नुकसान पहुँचने की खबरें सामने आई है। लगभग 48,000 घरों में बिजली कटौती की सूचना दी गई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सदन को प्रभावकारी और परिणामुखी बनाने के विषय में सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने किया राजनीतिक दल के प्रमुख सचेतक और सचेतकों के साथ विचार विमर्श। कर्णाली प्रदेश में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मंगल बहादुर शाही मुख्यमंत्री पद पर हुए नियुक्त। लुम्बिनी प्रदेश में नेपाली कांग्रेस ने सरकार को दिया हुआ अपना समर्थन लिया वापस। स्वास्थ्य सेवा में अवरोध न करने का स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय ने आग्रह। और जापान के क्यूसु टापू में शक्तिशाली भूकंप, कई लोग मलबे में दबे होने की आशंका। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
4: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
5: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही नै मजाले चलाउने
6: *14#15# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
7: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल,
8: नेपालको समावेशी आवाज।

रेडियो नेपाल, नया नेपाल को समावेशी आवाज, राष्ट्रीय रेडियो, राष्ट्र को संचार।

संत संग सत्संग करू तिन सेवहु दिन रात, श्रद्धा रति अरु भक्ति सब आपू ही तेही मिली जात। वास्तविक सद्गुरु को निरंतर संगबाट जीव में श्रद्धा भगवत रति एवं भक्ति स्वतः पैदा होना थाल्छ। कारण संत को संग में निरंतर उनको प्रत्यक्ष सेवा को अवसर प्राप्त हुन्छ। सेवा द्वारा नै मलिन अंतःकरण को शुद्धि हुने छ। परम पावन सद्गुरु चरण को सदैव शरणागति को याचना सहित आज गुरु पूर्णिमा को बिहानी में यहाँहरुमा हार्दिक शुभकामना सहित राधे राधे। श्रोताहरु, आज व्यास जयंती एवं गुरु पूर्णिमा हो। गुरु जीवात्मा को जीवन में एक महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य तत्व हो। यसलाई उजागर गर्न पूर्णोत्तम पुरुषोत्तम भगवान स्वयंले पनि अवतार काल में गुरु वरण गरी लोक शिक्षा प्रदान गरे। आउनुहोस् कार्यक्रम को शुभारंभ करूँ गुरुवर को आरती गायनबाट।